0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन नहीं है लेकिन नंबर वार है, तो भी बाप दादा का हर कलब का सिक्की लता बचे, इसलिए अपने सिक्की लते बनने के भाग्य को सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा अवश्य बता हुआ, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं दे। दिल साफ मुराद हासिल, किचरे वाले दिल में बाप नहीं आता। और समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी, सिर्फ ज्ञान से जाना लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया अर्थात दिल से निकाला आपकी जिम्मेवारी पूरी। अगर आप समझते हो कुछ हो नहीं रहा है तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा, जो जिम्मेवार है वो धोखा बनेगा। आप निश्चिंत
2: सोचना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: साधारण बोल, अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है, प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, पाप दादा विशेषता को बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैपन को समाप्त करो। ये सूखे मैपन है। अलौकिक जीवन में ये मैपन दर्शनीय मुहूर्त नहीं बनने देता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा चारों की लकी और लवली बच्चों को देख रहे क्या सिख।

Anne Boti. Anneke. Permatam kasaneke. Malik banane wali.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: జనం కిసోగాన్ శ్రేష్ఠమన కవిమాన్ విమాన్ మే జ్యాదా మేహనత నహీ కర్ని పడతీ స్టార్ట్ కర్నా హై తో మేరా బాబా బస్ చలానా ఆతా హై నా విమాన్ జబ్ భీ కుచ్ హో మధుబన్ మే పహుంచ్ జాఊ భక్తి మార్గ్ మే చార్ ధామ్ కర్నే వాలే अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं और मधुबन में भी चार धाम है तो चार धाम किए पांडव भवन में देखो चार धाम है जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना एक शांत दूसरा बाप दादा का कमरा ये सने का दाम और तीसरा झुपड़ी ये सने मिलन का दाम और चौथा हिस्ट्री हाल तो आप सभी ने चार दाम किए अभी किसी भी धाम को याद कर लेना कब उदास हो जाओ तो झुपड़ी में रोरियान करने आ जाना शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना और वेस्ट बहुत तेज हो बहुत फास्ट हो तो स्त्री हाल में पहुंचना समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो बाप दादा के कमरे में आ जाना
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार काउंसिल करेंगे।

0: ऐसे बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी एक मिनट निकाल इस अभ्यास को
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है लिए

0: las apasionaría por atender la te por arte ley acha toy or pisa pasbat sunate bab tata nintika ke mechati समय प्रत समय सदा ने कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे, इसलिए ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया देख लिया, हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रिस्क करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sadi Sabah.

Monaco. Chissà.

में पाप के साथ।

0: किस्सा काट में आ जाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ उठाने में तो होशियार नहीं, बाप दादा खुश है, खुश है। हिम्मत तो रखी ना, तो हिम्मत है बच्चे, मदद है खुदा। जरूर मदद मिलेगी, सिर्फ इच्छा रखो बस। पढ़ना ही है, करना ही है, पुरुषार्थ ही नहीं, पुरुषार्थ बाप दादा खुश होते हैं। कोई कोई बच्चा अभी भी से कम जो रेगुलर आने वाले है, उन्हों को दीवार पुरुषार्थ का लक्ष्य है। ऐसे नहीं है, नहीं की बातें सोचते हैं, लेकिन करने में थोड़े ढीले।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। सोचो, पालना क्या

0: उसने को देखना ये वृत्ति चेंज करो, अगर देखना है तो विशेषता देखो, ये तो होता ही है, ये तो चल सामने रखो, बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई न कोई कमी को परिवर्तन कर ही रही, सलोपकन भी है सी फादर सी सिस्टर सी ब्रदर, ये सलोकन है ही नहीं, कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई, विशेषता देखो, जो कमी वो निकाल रही है अपने से उसको नहीं देखो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कम से कम

Harcaga, Amrit Velika, Sadat to apnate, Koshish, Achhi kar rahi ho, Amrit Veliko main to dete ho, Lekin आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है, उसमें जरूरी

0: सभी खुश है कि बीच में माया भी चांस लेती है। खुशी नहीं कमाना, माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाता। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित्त परों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बनाना तो आदर पड़ जाए। ये अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है। तो अवश्य इस समय को सफल कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्वयं को और देखो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर। मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय सफलता की विजय।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चेक करो ज्ञान स्वरूप बनाओ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बनाओ। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला यथारथ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्म इंद्रियोचित बनना। हर कर्म इंद्री पर स्वराजदारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। इससे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली हो। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कल्पना करे, चाहे सने संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

पहुंच गए।

Nurse.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
2: जी। बच्ची को चक्कर लगाए, तू कहाँ कहाँ रही है? लेकिन बाप दादा उन्हों को कहते हैं कि बाप दादा के दिल में रहते। दिला

What the?

0: उसके लिए
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं, फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट जो भी

c'est pas

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी कर्म आरंभ करते हो चेक करो,

Nee, voilà. Karama

0: जैसे हथके मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य के सीट पर सेटोगे फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी के सीट पर से फिर हर कार्य करो इस मालिक बन की अथॉरिटी की चेकिंग इसकी निशानी है मालिक बन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में खुशी के अनुभूति होगी और रिजल्ट
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज चारों ओर के सर्व स्वमानदारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे, इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा स्वमान है इसको जानते हो? So

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हिम्मत।

0: सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शिव के ऊपर अक्क के फूल ही चढ़ते, तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे, तो ये क्रोध का अक्क का फूल को दे।

0: हिम्मत कभी नहीं हार। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, पढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है कहते हो ना, साथ है नहीं कहते हो कंबाइंड। ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो, बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिरार पर कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर वन हो। दी हुई चीज अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत है, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चल।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

什么别的

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चे क्या करते, कोई कोई सब नहीं, जो वरदान मिला उस

Resi

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि बड़ी इतना बड़ी परिवार विश्व में किसका है। आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार के रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं। वाह, फॉलोअर या परिवार, परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय होती हूँ चल रही है। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होगा। आपका यादगार माला है, माला में देखो कहा एक नंबर और कहा 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सबने अपना अकाउंट रखा, जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है। नियम परमान काम चलाओ नहीं, यथारथ रूप से जैसा भी है, लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है, सच्चा सच्चा अकाउंट चलाओ नहीं। वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, जिन्होंने रखा है, लिखा है नहीं, रखा है। दोनों ने रखा है, अच्छा पीछे वाले उठो, जिन्होंने रखा है वो उठो, खड़े हो जाओ, जिन्होंने रखा है आगे वाले भी खड़े हो, पहली लाइन बैठे रहो। हम ये अच्छा अच्छा यहाँ टीवी रखी है, अच्छा अच्छा यहाँ वाले कोई नहीं, यहाँ वालों ने नहीं रखा है। अच्छा डबल फॉरेनर्स, जिन्होंने रखा है वो उठो, जिन्होंने रखा है। अच्छा टीचर्स ने नहीं रखा है, अभी सोच सोच के उठ रहे हैं। अच्छा और ये पहली लाइन ने रखा है, हाथ उठाओ पहली लाइन वाले, हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मुबारक हो, बैठ जाओ। अच्छा जिन्होंने नहीं रखा है उन्हों को हाथ नहीं उठवाते। हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है।

Susana Marén, os compadramos, Marén. Y extra lift, pap dada ne apne taraf se di. Final paper me, aapki ye marks jo hai wo jama. जिन्होंने नहीं रखा है कोई भी कारण से है तो अलबेलापन और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी

0: Asaruri. Srimad Namananese. Mastu Katotiena. Atmejava Ava Panapota Mel. Tramanusar.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Kolban.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: That's it.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Yeah. संस्कार का वो मेरा है मेरा है किसका है ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार कहते हो मेरे संस्कार तो ये मेरा शब्द ये ही जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है ना वो भी पानी में और आपने मेरा बना के रख दिया है तो जहाँ रावण की चीज होगी वहाँ अशुद्ध संस्कार कटे रहेंगे क्या रहेंगे और राज किसका है शुद्ध का तो नहीं है ना तो राज है अशुद्ध जैसे सोना संभाल

0: सृष्टिपन्यान मेरा संस्कार क्या है जो बाप का संस्कार विशेष है विश्व कल्याणकारी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

संकल्प को समाप्त करो तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि इस व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो, बुरे संकल्प कब है व्यर्थ ज्यादा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सफल।

alle cambiato. Pap negli atleta. Che capivi? Okay.

Master Sarveshaktivan.

Esa verdad. Some man.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Chorona é a Tiana com Putkina e Engagada e Arô. Sabatiana com a Blog Vibraman que se bane a Tiana que Sandeja Mila. पारदर्शनी देखी समान संपर्क हुआ बदल गए। अचानक हुए ना सोचा था कि इस तारीख को भ्रमण बनेंगे सोचा था। अचानक हो गया ना तो परिवर्तन भी अचानक हो आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे 2000 तो सोचा था वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसी पहली माया अलबेला बनाने की कोशिश करें, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुना ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं, अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में। चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा पाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुश नुमा देखे खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान। कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं, अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लोग एक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सिंड्रक खोलने का उमंग रहता है ना। लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य के निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिक पन नहीं हो। अलौकिक पन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण। लौकिक कार्य छोड़ के समर्पण समारोह मनाना है, ये बात नहीं। नहीं तो फिर थी कैसे होगी। इसीलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो तो ऐसी आत्माओं को जो निमित्त लौकिक समझती है और रहती अलौकिकता में, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक। समझा। इसीलिए ये नहीं कहना दादी हम कुछ रहो नहीं कहूँ। और ये डबल प्राल बोध बना रहे आवश्यकता। अगर समझेंगे तो आप बीच रहेंगे। आपको क्या जिम्मेवार दिया है, आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ। थको नहीं, थक जाती है। लौकिक काम करके थक के आती है, क्या करें। नहीं खुशी खुशी में दोनों निभाओ, क्योंकि देखा गया है कि डबल विदेशी आत्माओं में कार्य दोनों तरफ करने की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ। कब छोड़ेंगे, क्या होगा, ये पाप और दादियों या जो निमित्त है तो उनके ऊपर छोड़ दो। आप नहीं सोचो। कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते और सेंटर भी संभालते, वो हाथ उठाओ। लौकिक कार्य भी करते हैं और सेवा के केंद्र भी संभालते, हाँ उठाओ हाथ। अच्छा வந்துச்சு. பாண்டவ பிச்சை வேண்டி ஆப் நிச்சந்தரம் நம்பர் ஆப் லோகம் கோவை ஸ்ரீமிலேங்கி जो सारा धन सेवा करते हैं उन्हों जितना ही मिलेगा. सिर्फ ट्रस्टियों के करना, मैं बन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं बन नहीं करा वरना हार करा रहे. मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ पावर के आधार पर चल रही.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा हर एक बच्चे को माला का मरका विजय जी।

0: करेंगे। कौन मरेगा? अच्छा, ओ बाप दादा, माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना? पसंद है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा के साथी पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेज फॉलोगे, सदा बाप समान साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं। वही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आता है। तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होते हैं। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, विघ्न आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना आवश्यक है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ने बहाने में कोई भी कमी होती है, तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी। क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति हाजिर दिल से। ऐसे ही मेरा बाबा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएंगी। वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर, नेगेटिव संकल्प, चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाए, क्योंकि ये अपोजिशन आएंगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आप सहज सफलता दिलाएंगे। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल किया, लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो अचानक या अंधकार हो जाता है, अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है आप रोशनी का स्विच ऑन करो। इसी बात बड़ी कर देते हैं और बड़ी

0: तो सहज विधि कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। अपन ने मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्मृति के सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे, बिना सीट के अपसेट होते। सीट है तो अपसेट।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, बड़ी बार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, बीच से तो है विश्व का राज करना है ना, और राज में उस संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में नहीं मिलती, अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। या संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए, और दुआओं की अनुभूति क्या होगी, अनुभवी तो होना अगर सेवा से मिलती है तो स्वयं भी हल्का रहेगा, और जिसके संपर्क में आए
2: someone may out
1: जैसी कहावत है, ज्यादा मीठे पार चींटियां बहुत आती हैं। इतना इसी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा है यो तो ग्रुप और बढ़ता जाए तो भारत की समस्या खत्म हो जाए। सेवा तो कर रही हूँ, खाली तो नहीं बैठे हो। पास हो जाता है। ऐसे कोई आत्मक बम लगाओ, एटम बम नहीं, आत्म बम। अच्छा बैठ जाओ, मुबारक हो बहुत।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बाप दादा ने देखा कि अगर ब्रह्मांड मिलके कोई भी एक संकल्प करे तो वही बने, लेकिन सब
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप लाना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Peace.

0: ocha karanarse karanae. ये है बेद की सेवा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मेजॉरिटी बच्चों का फर्श का पोता मेल देखा, क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि बेटा ने और समाने की शक्ति कम है, मिटाते भी है, उल्टा देखना सुनना सोचना बीता हुआ भी मिटाते हैं, लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस दूसरा है सबकॉन्शियस, मिटाते हैं लेकिन माना कि प्लेट को स्लेट को कागज को कुछ भी को पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन फिर समय पर निकल आता, इसलिए जो चार शब्द बाप दादा ने सुनाया वो सदा नहीं चलते। अगर मानो बिल्कुल मानक की प्लेट को कागज को पूरा नहीं मिटा तो पूरा साफ न होने के बदले अगर आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा, अर्थात सर्वगुण सर्वशक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंट में होगा, बिल्कुल क्लीन भी हो क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सुर्खियां रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाते हैं। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर समाने की शक्ति नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ, नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। ये बेफिक्र बादशाह

के हर एक बच्चा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी तक पांच विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते फिर चाहे कोई भी विकारों

डिस्कोटेक करके। कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये भी व्यर्थ संकल्प का विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान। और आजकल ये तो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार। आप अपना एक दिन की दिनचर्या नोट करना, अभी तो मधुबन में होगा, तो मधुबन में तो कोई बात नहीं होती, लेकिन जब सेवा पर जाओ तो चेक करना एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अपमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे

0: समान बनना कोई मुश्किल।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: भोलेनाथ का भंडार, सेम, मेरा समझकर पर्सनल अपने वृद्ध एक रुपए की चीज यूज की कि कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है मेरा पन्ने समय श्वास अपने वृत्त नहीं बेहद किए फेरा की रहे इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में लगाई, वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज किया बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज किया कहने से भी सुनते हुए उपराम रहे, सदा बच्चों को सने देखते हुए भी ये शब्द रहे सब बच्चों के लिए सामने है, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा बेहद की फैराग फिरती सामने होते हुए बच्चे और सनई बच्चे अन्य अन्य बच्चे बेहद का वैराग रहा। सेकंड में उपराम फिरती का बेहद के वैराग का सबूत देगा। एक ही
0: रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेंटर तो सबसे
2: सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है,
1: फिर भी बॉम्बे बाप का बाप का परिवार है। लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे।
2: गुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती।
1: इससे बहुत कुछ होना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: धरनी पर बैठ

0: pasar, Loki. Fällt wir, du Chahilte. Fällt wir, war bist du ey? Du Chahilte. Fällt wir.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए। कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे में। अगर आप फोटो निकालो ना, और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये तो मस्ती है, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा

manakim balik. Cimana ko ese jalao. Jese paon aur paha ko jalate. Jo chahte ho wo karte hai na. Abhi aap jao yahan nahi, yahan rakho, rakh sakte ho na. Aise mind control. Jo chahe wahi man sankalp kare. Roz raat ko result dekho. Aaj man ke rolling power, controlling power kahan tak rahi? Abhi vyarat ko samapat jaldi jaldi karna chahiye. Tab samrat ban vayumandal mein samrat पन की शक्ति फैलाओ. बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते. सुनाया ना पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार. करना ही है, करेंगे, देखेंगे ये के

0: बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, आप अपने को।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप सदा बच्चों को कहती है, कभी भी अकेले नहीं बनना, नजदीक भी नहीं आ सकते।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदा कहते हैं, अगर किसी भी रूप में एक बाप का संबंध भी याद है, बाबा दिल से निकले, बाबा मंत्र माफक नहीं, बाबा बाबा वो राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

perreta. Shit.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो बाप दादा की तरफ से पदम आप सबका भी यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दें, मुक्त करें। उनों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते। तो इनों को मुक्त करो, क्योंकि पापा है ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना। तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए ये ड्रिल करो, 24 वाली, 24 घंटे है, रात और दिन के 24 घंटे है, और 24 बार करना है। नींद, नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में बढ़ाओ।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिन से किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah। अब समय पर मान, पाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूं, जीवन नेचुरल और सदा काल की होती, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनाओ जो लक्ष्य योगी जीवन का, जो लक्ष्य अनुभवी मूर्त बनने का, वो लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव, खुद भी उस स्वरूप स्वरूप स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप और स्मृति स्वरूप है या नहीं उनका प्रमाण ये है कि जहां स्मृति

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, सभी बच्चों को यही बार बार आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा भी देख रहे थे कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना क्या समय की पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रत तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए पूछो, अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। क्या वर्तमान समय की क्या पुकार है। बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दादापन की स्मृति और बरानी है। चाहे स्वोन्नति के प्रति दातापन का भाव सर्व के सने को इमर्ज रूप में दिखाई दे। बेहद के फिरती वाला होगा।

色带，金明基 ，Master Sagarong， Marge Jane.

0: Geschichte an die Ecke.
1: आत्माओं

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Man.

Tristinho.

Thank you.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Shannon.

Professor.

Tchau.

Vicious. Guardian. Joe.

कोई भी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन बीते सॉरी।

0: तो सब क्या दिखाई देवे, फरिश्ते चमक रहे सभी बच्चे चमके हुए दिखाई दे। अभी इसीलिए पर्दा खुलना रुका हुआ है, न्यावाले चला रही है पर्दा खोलो पर्दा खोलो। अपना आप ही प्लान बनाओ, बनावा प्लान देते हैं ना तो फिर कई बातें होती है। अपना प्लान अपने हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलने ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है, इसीलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी परसेंटेज में हो जाती। जैसे प्यार 100% है वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता ये भी 100% हो, ज्यादा भले हो कम नहीं हो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो। हम ही थे हम ही है और फिर भी हम ही होंगे, ये निश्चय बना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी देवर गति का समय, देवर पुरुषार्थ का समय, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। कमाते भी तो कि नहीं, अभी मिनट की बात भी कही दूसरों के लिए, कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड, तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा हो सकता है कि मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विदानर बनेंगे ना। परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पढ़ रही है, तो पास
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब ये दो बातें दुनिया में विकसित होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं, ये दो बातें धीरे धीरे विकसित हो जाए। जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जैसे अभी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गई है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारिया मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है। ये धीरे धीरे अभी कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा, धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। ऐसे ये दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए। एक तो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होके कहे कि ये बात समझने की है, तो धीरे धीरे ये बात फैलती जाए। भाषण तो अभी कहते ही है कि ब्रह्मा कुमारियों का भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते, सुनने आते हैं, समझने लगे, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज होना चाहिए। ये तो विशेष बात है। इससे ये सिद्ध हो सकते हैं कि इनको ये सिखाने वाला को तो ऐसा पुरुषार्थ करो से तो हो जाए कि कोई अथॉरिटी है जो इन्हों को सिखाने वाली।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरण दे रही है कि समय के समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता की निशानी सारे दिन में ये भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अपमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अपमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संकल्प और मेरे पद के अशुभ संकल्प मैं कब नहीं हूं मैं भी सब जानता हूं। ये मेरा संकल्प ही यथारत है, ऊंचे ये मेरे पन का अपमान का संकल्प ये भी सुख्यम अपवित्रता का अंश। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गए, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया के स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो, तो जो निमित्त आत्माए हैं उनका वाइब्रेशन चारों

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

appreciate it.

संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई न कोई संस्कार नेचर के रूप में

चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी निकल आता। क्यों निकल?

ரூபமே அன்ஷம் மாத்திரமே புராணா தேவான் காசன்ஸ்.

risky. सेवा द्वारा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चलते हैं वह कभी टेंशन।

0: जापान में सेट नहीं होते हैं, तो जहाँ स्वमान नहीं वहाँ क्या होता है जानते हो ना? ये अपमान या तो स्वमान है या तो देमान।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देव देविया और देवताएं हो ना हो,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Like.

Tschüss.

up.

下呀。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Kam Sewa. Yehi Mansa. Vamano Balki Sewa. Iska Abhyas. Abhi se karo. Jai. Vani Dwara. Va. Saman Sampara Dwara. Seva. Karte ho. Lekin. इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। मनसा सेवा वही रंगत दिखाएंगी जो इस स्थापना के आत्मे पाप के मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। और मनसा सेवा के फल स्वरूप आप भी देख रहे हो। वही

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सबकी दादी निमित बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती। तो जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखे सबसे बड़ा पेपर दादी ने अव्यक्त बाप होने की टाइम दिया। ऐसे वायुमंडल अचानक और इतने हिम्मत रख और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त तो बने। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेलाया छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।
2: भाइयों को बुलाया,
1: दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ जो लक्ष्य रखे दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान पास ना दे। ग्रुप चाहिए एक नहीं, एक दो के साथी बन। ऐसा वर्तक के स्वरूप देख फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Shit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Приятка.

अमृत लेके अमृत वेले से लेके

सेवा में भी।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अपने भाई बहनों के ऊपर रैप दिल बनो और रैप दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें पर भी चाहे कितना भी बुरा, लेकिन अगर आपको रहम है उस आत्मा के प्रति तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम, मतलब का रहम भी होता अंदर लगा हुआ किसी आत्मा के प्रति और समझते हैं रहम पर हुआ मतलब करें सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देवभान नहीं। Leave.

कोई अलग कल की प्राप्ति के कर्म तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा छुट्टी नहीं है, थोड़े की छुट्टी नहीं। अगर कर्मातीत बनना है तो ये सभी रुकावटें, ये बॉडी कॉन्शियस मिले, अच्छा है लेकिन बना

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

sei.

कट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाजा खोलने के लिए सभी कट्ठे हाजिर हो जाएंगे। तो वो डेट

Choco. Be honest.

ya bien. Get to call next.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Unknown.

subtle.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा जो बाप दादा ने, समय पर तो समय प्लान दिया है, वो बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है।

tanto. Pues cortica. Y esto es...

सबको।

0: be. Bhaktataku. Apne dil tak tumhe bitay.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रोज अमृत वेले जी करो, मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या चल रहे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है चाहे चार है चाहे बारह है, लेकिन तो काफी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों

0: geval. Ik doe mijn slechtste panai met Laneki Kosjes. Че се тати ко яд картена, ки у яд картел, узки вишеща, сапко апна пандия. Ена е се, сапико апна пандияна. То ки у ап сапи не кар сатео. जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी प्रमाण एक दो में अपनापन अनुभव कर को याद करना, इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना? हर एक यही सोचो, सब अपने महसूस हो, ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना। दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते। ये दिल की अपनापन।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Nurse.

Coração.

Nossa!

Sim.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है?
3: So

0: स्मृति स्वरूप है और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आदि अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप सोचना स्वरूप नहीं।
1: सबसे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप भी

Tone.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे। माताओं को सहज चाहिए ना, बाप दादा यही सब माताओं को बच्चों को कहते हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद दुआ को भी अपने शुभ

मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार
आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: स्मृति सेकंड में समृद्ध बना देती स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते स्मृति का नशा चढ़ जाता। Yes.

Шатера. Дельсипела. Санейка. Шаптакон Саникла. Shut up.

जा प्राप्तियां होती है। याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन सुताई आती, सहजी आती। क्योंकि मेरी हो गई ना, बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया, तो मेरा पन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही। मेरा बुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है, मेरा शरीर सहज याद हो जाती, तो स्मृति ने

0: aggiornano.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना पाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और पाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है? आत्मा है, नंबर वन आत्मा है तो है स्वयं बच्चों के याद के पाप रह नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Sigh.

Thank you.

स्वीकार किया करता।

जगत तो बाबा
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Fuertito, Alan.

months.

Bata vuran genç karnam uski yavaşıldı. Sonra ne sunar desin yoga. Lekin apne मनुष्यों के वृत्ति को दृष्टि को कृति को परिवर्तन कर सकती आज आवश्यकता है मन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई व्यर्थ वा विकारी सोपत लगाओ का सोपत आता है तो अवश्य सजा

geliyor.

सात सोचा अकेले नहीं, अकेले सोते हो ना तभी सो बनाते। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते, क्योंकि फरमान है या तो फरमान, अगर फरमान को नहीं मानते हो तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ करके दिल में अरमान होता है ना, मेरी पवित्रता स्वप्न में कदम हो, ये कितना अरमान है। कारण जैसे आया आया वहां की बातें करते करते सो जाओ, क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं ना, और दिलचस्प समाचार।

Я Анабель Аббат. Я фар.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाने जमा होता जाए। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, जमा कितना है। हर खजाने का चार्ट देखा तो क्या देखा कि अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। समय का मैं तो चलते चलते कभी कम इमर्ज रूप में होता है। अगर सदा समय का मैं तो याद रहे इमर्ज रहे तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है। गलत नहीं लेकिन साधारण ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते। एक घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते जमा नहीं होते। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं संकल्प में थोड़ा चलता है संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी है, थोड़ा समय तो पड़ा है तो समय पर संपन्न
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मेडिकल वाले अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा बेफिक्र बात फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। ऐसी दवाई निकालो जो कभी भी कोई थोड़ा सा तन से या मन से ना खुश हो तो दवाई को याद करते ही खुश हो। What the?

0: सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाए। अच्छा बैठ जाओ, बहुत अच्छा सेवा कर रही है, करते चलो। विजय तो आपके साथ है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ सेकंड में बिंदी लगाना, समान तो अब बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बच्चा का रूप देख रहा है, इसी रूप को सदा अनुभव करो। कोई भी कुछ भी आवे मेरे को तेरे में दे सवाल।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दे ही अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा के मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करनार पन बाप सम्मान न्यारे और प्यारे, बाप सम्मान बनने चाहते तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कपड़ा ड्यूटीज, लेकिन मैं करनहार हूं, ट्रस्टी हूं, करावनहार मालिक शिव बाबा। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाते, तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को सम्मान बनाना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Come on.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते। संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। बाप को भी हर बच्चा प्यार है, ऐसे नहीं इतने बच्चे पता नहीं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बाप विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है, आप बच्चे। एक है कितना प्यार है, आप कहते हैं प्यारा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यार है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी बच्चों को

ऐसे चारों ओर के परिस्थितियों के बीच में

समय पर आप अपने मनबुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। ये एकाग्रता की शक्ति केंद्रल समय पर करके देखिए। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएंगे। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति का अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहिए। ऐसे मनबुद्धि को भटकाने वाली बातें आने ही है। तो अभी करो कि मन को बुद्धि को आप एक सेकंड

ब्रह्मन मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूं। इस मास्टर शक्तिवान

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

0: और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवा जाने वाले परमात्म साथी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: प्रोग्राम तो बड़े की है, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं काम ने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे, निकल आएंगे 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो, जरूर क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ होना चाहिए।

sa vela. Aur ye kya raja? Ye kya ke brahmar?

0: सफलता की चाबी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

franzo ti è, fanciano ti è, usme amara vi paro na jai, agar bhi hum log ko kab chance mile, aur aapki ichha hai आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को चांस नहीं मिलता है, तो उस समय चिड़चिड़ापन

उनकी मृत्यु व्यर्थ संकल्प चलेंगे चलेंगे ना, तो वो पवित्रता तो नहीं हुई ना। अब फर्क करना, विचार देना इसके लिए जुटी है, लेकिन विचार के पीछे उस

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Nice.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सर्कमस्टेंसेस है, उसको नहीं देखो लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को दिन को किनारे कर। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले बाहर के समान है क्या? बाहर से मात्र टकराना है, बाहर टिकना क्या? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से उस झमेले के बाहर के भी ऊपर चल, तो बाहर भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना है अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेलों की दुनिया, झमेले तो आएंगे, आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है, तो आपकी दुनिया ही वो है तो वही आएंगे ना। आप अमेरिका या लंदन जाएंगे क्या पेपर देने के लिए? सेंटर बड़ी दे झमेला नहीं आवे, ये नहीं सोच। झमेला मुक्त बनना है ये
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कहीं कहते हैं ज्ञान योग ज्ञान बस बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा है ज्ञान, अच्छा है कहेंगे ज्ञान यूज करते हो अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म मिलाते हो ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा कहना नहीं, ज्ञान का अर्थ है समझ, समझता जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है, समझदार

0: appeared. Swarup ki nishani hai. Sada swayam bhi double light. Kitne bhi zimmewari ho, lekin dhana murad sada double light. दोनों में डबल लाइट और सेवा तारीख की निशानी है. सदा निमित्त और निर्माण भाव तो ये सभी अपने में चेक करो. कहने में तो सभी कहते हो सब्जेक्ट के काटली स्टूडेंट है ना, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, आता है चित्र खींचने आता है।

सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, घर में इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी है, कांधे लाओ। Sabi.

पहली रचना श्रेष्ठ।

रचना इस फिरके के चर में

See.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

लगा देगा।

0: बच्चे को हिम्मत रख, विजय प्राप्त करनी है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सब्जेक्ट में बहुत

बहुत गिलहरी होती कहने वाले यही कहती है, देख लिया क्या नहीं तो आत्मा बच्चों को क्रोध के बहुत रूप है। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है ये क्रोध कर रहा है। स्वरूप ईर्ष्या द्वेष घृणा अंदर में होती है, उसके स्वरूप में बाहर से जोर से बोलना या बाहर से रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर में जैसे बाहर क्रोध होता है तो अगर रूप है ना, क्रोध चलता रहता है अंदर खुद भी और दूसरे को भी चलाता है। ऐसे ईर्ष्या द्वेष घृणा जिसमें

रूपी है वो चतुराई का रूप है, क्रोध के चतुराई का रूप है। वो क्या है कहने में समझने में ऐसी समझती है, वह कहती है

0: 小腿，啊，就你没等，阿杜玛耶，我能够比拉乌达那尼巴特。रिवाइज कराना पड़ता है, ला उठाते नहीं, कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो ला को पाप द्वारा बनाए हुए ला को रिवाइज करना पड़ता है, इतनी छुट्टी है निमित्त बनने वालों को, सबको नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चारों ओर सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी आतंक सेवादारियों को मुबारक भी देती है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रही है और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो बाप दादा, सेवा के लिए मना नहीं करते, और शोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल रहा थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में

0: जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है, इसलिए क्या करेंगे इस
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।